नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी

0: गिरफ्तारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शॉपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी

पर एक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा

0: 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षा

0: पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद मिलादुन्नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests.

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफ एम रेनबो चैनल पर। मस्त मुंबई कार्यक्रम शुरू हो गया है, रोशनी आपके साथ है। 26 अगस्त 2026, क्या बात है, क्या तारीख है, और दिन भी कितना खास है।

क्योंकि आज ओनम भी है और साथ ही ईद भी मना रहे हैं। जैसे ही सुबह ईद मनाना है, ईद की शुभकामनाएं देनी है, ये सोचते हुए घर से बाहर निकले तो लोग ईद की तैयारियां भी कर रहे थे और दूसरी तरफ जो है ओनम की भी जो है सारी तैयारियां चल रही थी। कई सारी महिलाएं साथ मिलकर फूलों की बहुत सुंदर जो है रंगोली बना रहे थे। तो आज ओनम और ईद हम सभी जो है मना रहे हैं और साथ ही देखो अब त्योहारों का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम रक्षाबंधन भी मनाने वाले हैं। तो ऐसा करते हैं, इसी त्योहारों का जोश का सेलिब्रेशन का मूड बरकरार रखते हैं और मुंबई के मतवाले राही जो है इसी से जुड़ी बातें करेंगे। अब देखो ये जो मुंबईकर है त्योहारों में क्या करते हैं, घर पर रहते हैं, घर वालों के साथ जो है त्योहार मनाते हैं या फिर त्योहारों के वक्त भी जो है काम पर निकल पड़ते हैं। जो भी है जरूर साथ मिलकर बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी को ईद मुबारक।

0: रहमतों की बारिश हो, खुशियों की बहार हो, हर दिल में मोहब्बत हो और चेहरे पर निखार हो। ईद ए मिलाद उन नबी मुबारक, आप सभी को ओनम की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। त्योहारों का दौर है, त्योहार हम सभी मनाने वाले हैं, कभी कभी घर पर मना लेते हैं और मानो छुट्टी ना हो तो फिर क्या होता है, मुंबई कर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज वो होने वाला है मस्त मुंबई कार्यक्रम में, बुधवार का दिन है तो आज क्या होता है जानते हो आप। मुंबई के मतवाले राही जो है अपने दिल की बातें, अपने अनुभव जो है एक दूसरे से बांटते हैं। तो त्योहार से जुड़ी बातें जो मुंबई कर ट्रेन में कैसा करते हैं, क्या करते हैं, वो होगा आज 10 बजे तक। और उसके बाद जो है छोटे छोटे बच्चों से जुड़ी बातें होने वाली है, बाल जगत में जो है हम उनके साथ उनकी दुनिया में खो जाने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रोशनी आपको यहीं पर मिलेगी, यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

आज शुरुआत हुई है दिन की और वक्त और मुहूर्त भी इसी तरह का है कि इसी जोश के साथ दिन की शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मौके की तलाश नहीं करनी है, हर दिन की शुरुआत इसी तरह होनी है, लेकिन अपने आप जब कुछ खास होता है हमारा मूड हमारी एनर्जी जो है उससे मैच करना शुरू कर देती है। अब जो वाकई छुट्टी लेकर त्यौहार मना रहे हैं उनके लिए ये बात तो बहुत सही है, लेकिन हर किसी को आज के दिन या फिर हर त्यौहार पर छुट्टी मिले और आज की तारीख में तो ये हर बार मुमकिन नहीं होता है। कहीं उनको जो है त्यौहारों के दिनों पर भी काम पे बुलाया जाता है। अब काम भी करना है, त्योहार भी मनाना है, ये दोनों साथ साथ कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये हमारे मुंबई घर जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने काम और फेस्टिवल्स के बीच का एक तालमेल जो है ढूंढ ही लिया है। इसलिए हमने कई बार देखा है कि लोकल ट्रेनों में लोग जो है दिवाली से लेकर गुड़ी पाड़वा, बर्थडे पार्टीज, इन सबका सेलिब्रेशन लोकल ट्रेन में ही करते हैं। अब तो ऐसे भी हुआ है कि एक बार एक लेडी जो है उन्होंने जॉब चेंज कर दी, तो अब जब जॉब बदल रही है तो उनका हर रोज का जो स्टेशन जहां पर वो उतरेंगी वो बदलने वाला था, टाइमिंग बदलने वाली थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो रोज की ट्रेन है उससे आना जाना नहीं होगा, इसलिए उस ट्रेन की जो सहेलियां हैं उन सभी को आखिरी दिन पर गर्मा गर्म अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाई और कॉफ़ी पार्टी देकर जो है जॉब चेंज की खुशी जो है मनाई गई। तो इस तरह बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग मौके जो है ढूंढ निकालते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन जो है वो चलता रहता है और वही सेलिब्रेशन आज आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर भी चल रहा है।

0: RTGS, IMPS, Cosmos Rupay और Visa Debit Card.
1: UPI जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos Bank में जरूर होना चाहिए.
0: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.
2: नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर. अब एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम जो है चल रहा है, दूसरे घंटे की शुरुआत हुई है और अब हम झट से सुनेंगे सावरिया फिल्म से गाना आवाज पार्थिव गोयल की, संदीप नाथ के बोल, मोंटी का संगीत. और अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो बता दूं, मैं हूं रोशनी. मस्त मुंबई में साथ मिलकर हम त्यौहार मना रहे हैं और हमारे मुंबईकर किस तरह मनाते हैं ये जान रहे हैं. तो अगर थोड़ी सी हिंट देनी है तो प्रणव शिंदे जो हमारे लिसनर हैं, उनके शब्दों के साथ जितने भी सारे लिसनर्स हैं उनको मैं वही बात बताना चाहती हूँ कि लोकल की भागदौड़ में भी त्यौहार का रंग नहीं घटता. लोकल की भागदौड़ में भी त्यौहार का रंग नहीं घटता. काम और जश्न का ऐसा संगम मुंबई के सिवा कहीं नहीं सचता. हाथों में टिफिन का डिब्बा, दिल में बाप्पा का वास है. मेहनत और मन्नत का ये मेल मुंबईकरों की ही सास है. दफ्तर की फाइलों में भी यह भजनों से मुस्कुराती है. ये मुंबई है जनाब, जहाँ जिम्मेदारियाँ भी त्योहारे मनाती है. क्या बात है, जिम्मेदारियाँ भी त्योहारे मनाती है, यही परिपूर्ण जो बात है बस इन्हीं शब्दों में आ गई है. लेकिन जिम्मेदारी और त्यौहार का संगम जो है मुंबईकर कर रहे हैं, आज वही हो रहा है. आप जहां पर भी हैं, काम पर हो या घर पर हो, जरूर सुनते रहो 107.1 और न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर एफएम रेनबो.

म्यूजिकली योर्स एफएम रेनबो। और जब त्यौहार मना ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं, हाल ही की बात है कि मुंबई में त्यौहार तो मना ही लेते हैं लेकिन एक भजन मंडल है, उन्होंने अपने 21 साल पूरे किए और इसका जश्न जो है उसकी खुशी भी जो है लोकल ट्रेन में ही मनाए, क्योंकि ये जो भजन मंडल है उसकी शुरुआत भी लोकल ट्रेन में ही हुई थी। दादर से लेकर भाईंदर का सफ़र हर रोज़ तय किया जा रहा था और इतना लंबा सफ़र है तो जो है भक्ति गीत और भजन गाते हुए ये जो सारे लोग हैं इस तरह सफ़र बहुत अच्छे तरीके से बिताते थे। ऐसा करते करते 21 साल हो गए और 21 साल होने की खुशी जो है उन्हें सबके साथ बांटनी थी। बाप्पा को जो

है, शुक्रिया कहना था। तो अब सोचो भजन मंडन किस तरह लोकल ट्रेन में कर सकता है। तो जाहिर सी बात है आरती जो है, आरती की गई, प्रार्थनाएं गाई गई और उसी के साथ साथ भगवान को 56 भोग जो है चढ़ाए गए। अब लोकल ट्रेन में कैसे कोई 56 भोग चढ़ा सकता है, लेकिन ये जो मुंबईकर है इसके लिए भी रास्ता ढूंढ ही निकालता है। बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन

थोड़ी सी छोटी बात पता चल जाती है तो लोग काफी खुश हुए कि लोकल ट्रेन में लड़ाई झगड़ा तो ये काफी प्रचलित है, लेकिन इतने सकारात्मक और धार्मिक अनुभव जब देखने मिलता है वहां पर हम शामिल हो या ना हो, लेकिन ये दृश्य देखकर सुनकर भी जो है वही पॉजिटिविटी जो है हम तक भी पहुंच जाती है।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: मुंबई के मतवाले राही आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। और मुंबई के लोकल ट्रेन में कई बार ऐसे होता है कि दो पैर जो है वो सही से रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन्हें कुछ करना होता है, उन्हें मौज करनी होती है, वो रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। क्योंकि लोकल ट्रेन के अंदर भी जो है नवरात्रि के दिनों में डिब्बों में गरबा खेला गया है। अब ये कैसे कर लेते हैं, वाकई भी आमने सामने देखना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम यकीन कर पाएंगे लोगों ने लेकिन ये वाकई किया है। यहाँ तक कि गोद भराई की रस्में जो है वो भी जो है की जाती है, और सिर्फ की नहीं जाती है, पूरे रीति रिवाज के साथ मनाई जाती है। अब ये सब देखकर कुछ को पैसेंजर्स जो है वो तिलमिला जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है ऐसे लोगों की वजह से उन्हें असुविधा होती है। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं वो जो देखकर या फिर सुनकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लड़ाई झगड़े के मुकाबले ये जो आवाज़ें हैं कई ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप क्या और क्या देखना पसंद करेंगे, आपको पसंद आता है जब आप शायद उन त्योहारों में उस जश्न में शामिल ना हो, लेकिन लोकल ट्रेन में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोगों को जब त्योहार मनाते हुए देखते हैं, आप भी झूम जाते हैं और आप भी अपने आप ही सही दिल ही दिल में गरबा करने लगते हैं।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

इसी महीने की बात है, मुंबई लोकल में रिटायरमेंट सेरेमनी का आयोजन किया गया। अब ऑफिस में जो है सेवानिवृत्ति का समारोह जरूर होता है, घर परिवार के लोग जो है वो भी सम्मानित करते हैं, लेकिन ये सब कुछ लोकल ट्रेन के दोस्तों ने भी किया। यानी कितने लकी इंसान है, देखो ट्रिपल सेलिब्रेशन हो रहा है, ऑफिस में भी रिटायरमेंट पार्टी हो रही है, पूरी सेवा जो है पूरी कर दी, इसलिए घर परिवार के लोग जो है वो भी अलग तरीके से जो है उनको जो है सम्मानित कर रहे हैं। और फिर जो लोकल ट्रेन के दोस्त हैं उन्होंने भी किया, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी ओर से कुछ करें। इसलिए जो को पैसेंजर्स जो है जो हर रोज़ उनके साथ होते हैं, उन सभी ने जो रिटायर होने वाले थे उस जेंटलमैन को जो है शॉल ओढ़ाई, गुलदस्ता दिया। और सिर्फ अपने ही दोस्तों के बीच नहीं, उस दिन लोकल ट्रेन में उस डिब्बे में जितने सारे लोग थे उन सभी को स्नैक्स और मिठाई जो है बांटी गई। क्या बात है ना, कितना अच्छा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को जो है सही ढंग से जो है लोग अलविदा नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे ही प्यार और सम्मान पूर्वक जो है किसी को खुशी खुशी विदा किया गया, तब बहुत तसल्ली होती है, बहुत संतुष्टि जो है दिल को मिलती है। और ख़ास तौर पर जब जिंदगी भर काम की जगह पर भी इतनी मेहनत की, घंटों तक हम मुंबई में, हमें पता है कितने वक्त जो है हम लोकल ट्रेन में ही बिताते हैं, और उसके बावजूद घर और काम दोनों भी पूरी तरह संभालने की, उसके बीच जो है संतुलन रखने की पूरी कोशिश करती है। और जब इस तरह लोग जो है हमारे साथ बर्ताव करते हैं, हमारे लिए कुछ छोटा सा ही

लेकिन एक प्रयास करते हैं तो जिंदगी भर जो भी कुछ किया वो सही किया, इसका जो है एक प्रमाण भी हमें मिल जाता है, और इससे बड़ी संतुष्टि शायद ही कुछ हो सकती है। तो आप भी उन्हीं में से एक हो जिन्होंने ऐसी बहुत खूबसूरत बात की है या फिर दूसरों के लिए उनके छोटे छोटे पल खास बनाए हैं। आप सभी को लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, ऐसे ही दूसरों की जिंदगी में खुशियाँ बढ़ाते रहो, बिखेरते रहो। और अभी के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए काई पूछे फिल्म से गाना।

0: आप सभी का फिर एक बार स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। मैं हूँ रोशनी। मस्त मुंबई कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर मुंबई के मतवाले राही जो है बहुत बहुत ही प्यार से बहुत जोश के साथ जो है सारे त्यौहार मना रहे हैं। उसके बीच थोड़ा ध्यान देते हैं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पर, क्योंकि हमारे देश में हर वर्ष की तरह इस साल भी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा यानी नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट जो है वो मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 25 अगस्त यानी कल से हुई है और 8 सितंबर तक जो है वो चलने वाली है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो लोग आंखें दान करना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस फोर्टनाइट की जो है शुरुआत की थी और वो आज भी मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो आई डोनेशन करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, कब करें, क्या वो खुद एलिजिबल है या नहीं, इसको लेकर काफ़ी सवाल होते हैं। और जब ऐसे दिन मनाए जाते हैं, एक पूरा एक फोर्टनाइट उसके लिए समर्पित किया जाता है, तो जो भी सारे सवाल है उसके जवाब जो है आसानी से उन तक पहुंच जाते हैं। तो आप ही उन्हीं में से एक हो जो सोचते हैं क्या हम कर सकते हैं या नहीं, तो सवाल का जवाब यही है कि लगभग हर एक इंसान जो है आंखें दान कर सकता है, चाहे उनकी उम्र जो भी हो, जेंडर या फिर ब्लड ग्रुप को लेकर भी कोई रोक टोक नहीं है, हर कोई कर सकता है। यहाँ तक कि अगर डायबिटीज़ या फिर मोतियाबिंद का अगर उनको वो परेशानी है, वो सारे लोग भी एलिजिबल है आई डोनेशन के लिए। ज़रूर हम अलग अलग मीडिया पर जो है इसको लेकर काफ़ी बातें करते हैं, उसकी जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं और हमें सही जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ से भी हम आपको पूरी पूरी जानकारी भी देंगे और हमारा भी ये अपने तरफ से कर्तव्य होता है कि हम सारी बातें जान लें और हमारे आसपास जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी सलाह लें और जो वाकई हम नेक काम करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी आई डोनेशन का हिस्सा बनना चाहते हो, चाहे जिस तरह से, लेकिन आप भी इसका हिस्सा बने। इससे जुड़ी और भी बातें कुछ ही देर में मैं करने वाली हूँ, लेकिन अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

अगर आप सोच रहे हो ईद और ओनम के मौके पर ये हैप्पी दिवाली गाना क्यों बज रहा है, अगर आप शुरुआत से कार्यक्रम सुन रहे हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई है। और जो हमारे लिसनर शुरुआत से जुड़े हुए हैं ये सभी गाने काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। तो ऐसे देखो, हमने कुछ देर पहले जाना कि कुछ पैसेंजर्स जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी जो है लोकल ट्रेन में होती है, पूरा जो डिब्बा होता है उसे सजा कर धूमधाम से जो है उनका ये जो आखिरी ट्रेन राइड जर्नी होती है ऑफिस के लिए उसे यादगार

बनाई जाती है, उसी तरह कई सारी रेलवे कर्मचारी होते हैं या फिर जो मोटरमैन होते हैं उनकी रिटायरमेंट अगर आपने देखी है रेलवे प्लेटफॉर्म से, तो आप जानोगे कि वो सिर्फ देखने में भी इतनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि कई बार होता है जो मोटरमैन की जो केबिन होती है, उनका जो कोच होता है, उसे पूरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ होता है, बैंड वहाँ पर होता है, लोग वहाँ पर बैंड बजा दे रहे होते हैं, और उनके जो और जो कलीग्स होते हैं काफ़ी नाच रहे होते हैं, काफ़ी एक अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं। तो उनके लिए जो रिटायर हो रहे हैं, इस तरह से जब उन्हें अलविदा कहा जाता है तो उनके लिए बहुत शान की बात होती है। और रोज आते जाते जब अचानक से रेलवे स्टेशन पर अगर ये नजारा देखने मिले तो मुंबई कर दिल से बस यही कहेगा कि ये है मुंबई मेरी जान। और ऐसे सारे अनुभव जो है हमारे मुंबई शहर में ही हो सकते हैं। FM रेनबो पर रोशनी की जो बातें हैं मस्त मुंबई में, और ये जो मुंबई का मतवाला राही क्या क्या करता है वो आज अभी के लिए यहीं पर पूरी होती है। थोड़ा गानों का मज़ा और लेते हैं और मैं मिलूंगी ठीक 10 बजे समाचारों के साथ। तो सुनते रहो न्यूज़ ऑन एयर ऐप और 107.1 पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और अब जानते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। भारतीय नौसेना सोमवार को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण को अपने बेड़े में शामिल करेगी। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी, पानी के भीतर अभियानों और पनडुब्बी बचाव अभियानों में नौसेना की क्षमताओं की और मजबूत करेगा। समाचार में आगे, मुंबई में ईद ए मिलाद के अवसर पर 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर किसी भी लावारिस या संदिग्ध वस्तु को न छूने और इसकी सूचना मुंबई पुलिस को देने की अपील की है। और समाचारों के अंत में, शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण में फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट की

अमर को 19-9 से हराया। इसी के साथ समाचारों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले कार्यक्रम के लिए बने रहो आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो सेवा पर। रोशनी आप सभी का फिर एक बार स्वागत कर रही है। ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। 10:02 यानी नमस्ते भारत कार्यक्रम शुरू हुआ है। नेत्रदान से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें करनी है और आज बुधवार के दिन नमस्ते भारत में महिला एवं बाल जगत में हम जो है चले जाते हैं, तो आज बाल दोष जो है उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, उनकी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये सारी बातें एक छोटा सा गाने के बाद फिर एक बार यहीं पर लौट के आएंगे। आप तो वैसे भी कहीं नहीं जाते, तो साथ में मिलकर सुनते हैं 107.1।

एक लड़की ने अपनी सहेली से बहुत मासूम तरीके से बताया कि वो तो आई डोनेशन बहुत दिल से करना चाहती है, लेकिन उस लड़की को चश्मा है तो वो ऐसा नहीं चाहती कि अगर वो किसी को आई डोनेट करे और फिर उन्हें भी जो है चश्मा लग जाए। तो उसकी सहेली ने भी उतने ही प्यार से और उतनी ही मासूमियत से उसे बताया कि भले शायद चश्मा हो लेकिन वो कम से कम देख तो पाएंगे, जो इंसान पूरा अंधेरे में है उसके नसीब में थोड़ी तो रोशनी आएगी। इस तरह का जो है संवाद दो लड़कियों के बीच रहा है। और बाकी अगर हम एक्सपर्ट्स से बात करें तब पता चलता है जो चश्मा पहनते हैं वो भी जो है एलिजिबल होते हैं आई डोनेशन के लिए। यहाँ तक आजकल बहुत सारे लोग जो है लेजिक सर्जरी करवाते हैं तो वो भी चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी सुरक्षित रूप से जो है अपना आई डोनेशन ज़रूर कर सकते हैं। कुछ देर जैसे पहले हमने जाना कि जिन्हें डायबिटीज़ होता है, यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं जिन्हें मोतियाबिंद हुआ है वो भी अगर चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ नादान से सवाल या फिर कुछ डाउट्स लोगों के बीच होते हैं कि उन्हें लगता है जब नेत्रदान करेंगे तो कैसे गुड़िया की आग बाहर निकल आती है, बिल्कुल वैसा नज़र आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। केवल कॉर्निया जो है वो निकाला जाता है, उस वजह से पूरा चेहरा जो है पहले की तरह सही सलामत रहता है। इससे जुड़ी अगर आपको भी अगर कोई भी डाउट्स हो, इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से वो सारी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। एफएम रेनबो पर जो है आई डोनेशन फोर्टनाइट से जुड़ी बातें हम सभी कर रहे हैं, वक्त वक्त पर इससे जुड़ी और भी जानकारी आप तक ज़रूर मिलेगी।

0: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ
2: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल मैं हूँ रोशनी कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत जहाँ पर हम बहुत ही खास बातें भी करेंगे लेकिन उससे भी ज़रूरी बात फिलहाल के लिए राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है जो कल यानी 25 अगस्त से शुरू हुआ है आज सितंबर तक चलेगा उसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों के बीच जो है आई डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ानी है और उसी में अपनी तरफ से छोटा सा योगदान जो है एफएम रेनबो भी कर रहा है हर रोज़ जो है आने वाले दिनों में आपको इस दिन के लेकर इस फोर्टनाइट से जुड़ी और भी जानकारी मिलती रहेगी और हमारे साथ साथ हम देख रहे हैं हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोनों में इसको लेकर अवेयरनेस कैंप्स चलाए जा रहे हैं लोग खुद आगे चलकर आ रहे हैं इसका हिस्सा बनना चाहते हैं अपनी तरफ से कुछ योगदान करना चाहते हैं जैसे पंजाब में भी बड़े पैमाने पर ये सब कुछ हो रहा है पंजाब हो मध्य प्रदेश हो यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसकी बात जो है पहुँचाए ये कितना सेफ है और कितना ज़रूरी है ये लोगों को समझाए तो ये सारे प्रयास चल रहे हैं हमारे मुंबई शहर में हर साल अलग अलग जगह पर कैंप्स लगाए जाती हैं अवेयरनेस कैंप्स होते हैं रैलियाँ होती है अगर आप उस कैंप का या रैली का हिस्सा है या फिर आप उनमें से हो जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है आई डोनेशन के लिए अब ज़रूर अभी जो है हमारे पास थोड़ा सा वक्त है आज के लिए तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके अपनी जो खुद की कहानी है हमें बताओ और हम चाहते हैं आपकी बातें लोगों तक पहुँचा कर हम उन्हें प्रेरणा दे और हम भी कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा ले और इस अवेयरनेस को और भी बढ़ाए बातों को बस और कुछ शब्दों के साथ पूरा करूंगी जाते जाते भी दुनिया को एक हसीन पैगाम दे जाओ जाते जाते भी दुनिया को एक हसीन पैगाम दे जाओ किसी अंधेरी जिंदगी को अपनी आँखों का दान दे जाओ तमन्ना हो कि दुनिया को देखें हम मरने के बाद भी तमन्ना है कि दुनिया को देखें हम मरने के बाद भी तो अपनी इन खूबसूरत आँखों को नेत्रदान कर जाओ मौत के बाद भी जिंदा रहने का एक अरमान रखते हैं चलो हम अपनी आँखों को किसी के नाम करते हैं मिलेगा सुकून इस दिल

नमस्ते भारत में रोशनी आपके साथ है। बाल जगत में फिलहाल क्या हो रहा है थोड़ा ये भी जानते हैं। अब बच्चों को आजकल जहाँ भी देखते हैं, चाहे घर के चार दीवारों के अंदर होते हैं या फिर बाहर भी जब देखते हैं, कि उन्हें देखकर ये लगता है कि आजकल के बच्चे जो है वो स्क्रीन की दुनिया में ही खोए हुए हैं। तो बच्चे स्क्रीन के सामने हैं और बड़े इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इस हद तक कि आते जाते जो अजनबी है वो भी सलाह देकर जाते हैं कि कैसे बच्चों को मोबाइल से बहुत ज़्यादा दूर रखना है। अब इस बात से कई सारे बड़े जो है माता पिता है वो सफल हुए हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं। हर किसी की तो वही इच्छा होती है कि बच्चे जो है कम से कम वक्त जो है मोबाइल और स्क्रीन के सामने बिताए, लेकिन बच्चे और माता पिता तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जो बाकी की दुनिया है, क्या वो आज की तारीख में स्क्रीन फ्री किड्स के लिए तैयार है या नहीं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना भी उतना ही ज़रूरी है।

0: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ।
1: अब इंतजार करने की जरूरत नहीं।
2: क्यों?
1: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
2: कैसे?
1: प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।
3: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
4: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
5: I am Madhuri Dixit and you're listening to me on FM Rainbow.
6: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow channel of All India Radio. We're an old-time
7: love. Namaste dosto, main hu Dino Muria aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India Radio.

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मस्ती कौन करता है? जो बच्चा होता है वही तो मस्ती करता है, या फिर जो दिल से बच्चा होता है वो भी जगह जो भी हो, वक्त जो भी हो, मस्ती में लग जाता है। जैसे इंदौर के एक मॉल में हुआ, वहाँ पर एक इवेंट चल रहा था, एक VIP गेस्ट आए थे और वो इस इवेंट पर पहुंच गए थे अपने दो बच्चों के साथ। जब पिता वहां पर काम और ज़रूरी बातों में उलझे हुए थे, बेटे ने सही मौका तलाशा और वो मॉल के एक फाउंटेन में जो है वो कूद गया। वहां के जितने भी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो लगे थे कि वो बच्चे को जैसे तैसे बाहर निकाले, लेकिन वो बच्चा पानी में डुबकी लगा रहा था और खूब अपने आप को जो है वो एंजॉय कर रहा था। वो पूरा जो एक्सपीरियंस है उसे बड़ा मज़ा आ रहा था वो देखकर, जब तक ये बात पिता तक

और जी काफी देर हो चुकी थी, और जैसे ही उन्हें बात पता चली वो काफी शर्मिंदा हुए। लेकिन मॉल में और भी कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे वो काफ़ी नाराज़ थे कि उन्हें लगा कि ये क्या बात है, बाहर जब बच्चे निकलते हैं क्या इस तरह का बर्ताव बच्चों ने करना सही है या नहीं। लेकिन सारे तो नहीं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जो उस बच्चे को देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि भले आज हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चा दिल से जो है वो पूरा जो उसे मौका मिला है उसे एंजॉय कर रहा है, इसलिए उसे देखकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। और कई सारे लोगों ने आपस में यही कहा कि यही होता है जब बच्चे स्क्रीन से दूर चले जाते हैं और उनके अंदर का जो बचपना है वो बाहर निकल आता है।

0: छम छम अगर आप भी गाना सुनकर कर रहे हैं तो ऐसे ही करते रहो, क्योंकि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं। और बच्चे आजकल जो होते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि वो उनका ध्यान कहाँ है, क्योंकि सारा का सारा ध्यान जो होता है मोबाइल की स्क्रीन में होता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी ऐसा ही नज़ारा देखने मिलता है कि टेबल है, टेबल पर बच्चा बैठ और कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक तरफ मोबाइल है और दूसरी तरफ जो है फ्रेंच फ्राइज, तो ये जो मेन्यू है उनका सेट होता है। और मान लो ऐसी कोई फैमिली मिल जाए हमें जिन्होंने नियम बनाया हुआ है अपने लिए कि नो स्क्रीन टाइम, तो उस टेबल पर क्या होता है, ज़्यादातर उस टेबल पर जो बच्चा होता है वो ज़ोर ज़ोर से एक तो बातें करते हुए नज़र आता है, हंस रहा होता है, बच्चे हैं तो जाहिर सी बात इस तरह ही बर्ताव करेंगे। या फिर अचानक कोई ऐसा भी टेबल नज़र आता है जहाँ पर बच्चा इतनी उधम मचा रहा है कि पूरा का पूरा होटल जो है बस उसी को देख रहा है, और उस वक्त माता पिता के चेहरे जो होते हैं वो उनके जो हाव भाव होते हैं वो उन्हें ही पता होता है क्या चल रहा होता है। बहुत गिने चुने ऐसे बच्चे होते हैं जो चुपचाप से अपना खाना भी खा लेते हैं, या किसी किताब या फिर अपना जो पसंदीदा खिलौना है उसमें खोए हुए होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की मात्रा काफ़ी कम है। तो अगर ऐसे बच्चे हो जो बहुत मस्ती करते हो, बहुत आंधी की तरह जो बर्ताव करते हैं, तो कई बार माता पिता जो है मजबूर हो जाते हैं और फिर उन्हें स्क्रीन जो है हाथ में थमा ही देते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक गाना आपके लिए इंतज़ार कर रहा है भूतनाथ फिल्म से, लेकिन जैसे कहा अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

अब झगड़ा वगड़ा ना हो इसलिए कई सारे पेरेंट्स जो है पहले से ही तरकीब ढूंढ निकाल लेते हैं, खास तौर पर जब वो फ्लाइट से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा प्लेन में इतनी देर तक क्या करेगा उसकी चिंता पहले से ही उनके चेहरों पर नज़र आती है। इसलिए कुछ पेरेंट्स कई बार ऐसे करते हैं, जैसे एक जगह पर पाया गया था कि एक पेरेंट जो था उसने फ्लाइट शुरू होने के पहले ही सॉरी का कार्ड जो है हर एक को पैसेंजर को थमा दिया। यानी अगर मान लो फ्लाइट के दौरान बच्चा चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से रोए, तो वो माफ़ी पहले ही मांग रहे होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि बच्चे की तरफ से जो है चॉकलेट्स और गिफ्ट हैम्पर का एक जो है हर एक यात्री को दे देता है। यानी जब वो लोगों को पहुंच जाता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके बाद बच्चा मानो थोड़ा सा परेशान भी करे उसने पहले ही खुश कर दिया, तो ब्राउनी पॉइंट्स जो है उसको इस तरह मिल जाते हैं। लेकिन कुछ माता पिता होते हैं वो दूसरों के बारे में नहीं, पहले अपने आप के बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, और फिर वो तय करते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान हम छूट दे देते हैं अपने बच्चों को स्क्रीन के पास रहने की, क्योंकि इसी में उनकी भी भलाई है, हमारी भी भलाई है, और सारी जो सहयात्री है उनके लिए भी यही ठीक है। तो लोगों की परवाह ना करते हुए वो तभी के लिए जो उन्हें सही लगता है वो करते हैं। और बात तो वही है ना कि हर एक माता पिता वो खुद जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे बेहतर क्या है।

बच्चे पब्लिक प्लेसेस में शोरगुल करें तो भी लोगों को दिक्कत होती है, और मानो मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए हो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए परिवार और के साथ साथ सोसाइटी एज अ सोसाइटी, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा माहौल उनके लिए अनुकूल बनाए कि वहाँ पर वो स्क्रीन से, मोबाइल फ़ोन से दूरी बना पाए। लेकिन क्योंकि जब ऐसा होगा तब ही जो बच्चा है पूरी तरह बचपना जो है जी पाएगा। और इसी बात से एक और बात याद आ गई कि बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल कौन सा है। बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल कि बड़े होकर क्या बनना है। जवाब अब मिला है कि फिर एक बार बच्चा बनना है। तो हम सभी कोशिश करते हैं आसपास के जो बच्चे हैं उनके अंदर का बचपना जो है वो ज़िंदा रहे, हमारे अंदर का जो बच्चा है उसे भी हम ऐसे ही ज़िंदा रखें और ऐसा माहौल बनाए, ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर बच्चे बच्चे रह पाए। तो आप सभी को रोशनी की तरफ से ढेर सारा प्यार, आप सभी के अंदर के इनर चाइल्ड को टाइट हग, जादू की झप्पी। और हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि ज़िंदगी की जितनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसमें कई बार उतार चढ़ाव के दौरान जो हम जो है पूरी तरह खुल के जी नहीं पाते हैं, बच्चा जो है कहीं सा जो है सहम जाता है। लेकिन ऐसे ही खास मौक़ों पर, जैसे फ़िलहाल त्यौहार चल रहे हैं, ऐसे वक्त में क्यों ना हमारे अंदर के बच्चे को हम बाहर निकालें, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आप ज़िंदगी जो है और भी बेहतर हो जाएगी। फिर एक बार मेरी तरफ से आपको ईद, ओनम और रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। मैं आपको मिलने आऊँगी बहुत ही जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लग रहा है नए महीने में आपकी और मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहो और हर दम सुनते रहो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताजा समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में देश भर में 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। समाचार में आगे केरलम। जी हां, गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। यह बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मुंबई और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। विभाग के अनुसार इस दौरान मुंबई के आसपास के जिलों में ठाणे, पुणे और रायगढ़ में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। समाचार के अंत में, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केरलम वासी आज ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है डॉक्टर निखिल शासने। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम ब्रेक फ्री में, और आप सभी को ईद मुबारक।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ओणम के पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते एक छोटा सा विज्ञापन।
1: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी दोस्तों, कार्यक्रम का नाम है ब्रेक फ्री और हम सभी ब्रेक फ्री होना चाहते हैं, पर ये चार चीज़ों से हम कैसे ब्रेक फ्री किया जाए, आपको क्या लगता है कौन सी ये चार चीज़ें हैं? जी हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी जन्म मृत्यु के जो ये जो फेरा है, या फिर आगे जरा और व्याधि। जरा मतलब ओल्ड एज, हम बुजुर्ग होते जाते हैं दिन ब दिन जो है, हम सभी का ऐसे कहा जाता है एक कॉमन लक्ष्य है जी, कि हम सभी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमेशा मृत्यु बुरा होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, पर और दिन ब दिन हम जो है, हमारी जो उम्र है बढ़ती जाती है, तो ये चार

चीज़ों से हम कैसे इस चक्कर में से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे ब्रेक फ्री खुद को किया जाए, क्या लगता है कुछ सॉल्यूशन है? अगर है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657 आगे 66 1071, यानी हमारा नंबर है 8657661071। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। आप सभी के मैसेजेस मिल रहे हैं, अकोला से विजेंद्र घाटो कहिए, ओमकार काटकर, शुभलक्ष्मी मस्तकर, वैदेही, इंदौर से हमारे दोस्त अजय साखरे, प्रकाश शिंदे, गोवा से श्याम सुंदर है हमारे साथ, और सभी को शुभकामनाएं। पंढरपुर, श्री क्षेत्र पंढरपुर, हमारे महाराष्ट्र का जो तीर्थ क्षेत्र है, दैवत है, पंढरपुर से भी हमें संदेश आया है, आप सभी का स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और भांडुप से मीरा डिचोलकर, इनका भी संदेश है, गुड मॉर्निंग। तो जी हाँ, कुछ चीज़ों पे हमारा बस होता है, कुछ जैसे जन्म मृत्यु की बात कर रहा हूँ, कुछ पे नहीं। तो इस बंधन से कैसे निकले, तो आइए सोचते हैं, आपके विचार हम तक पहुंचाइए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: या दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल और FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। और आप मेरे साथ यानी RJ डॉक्टर निखिल के साथ है और हमारी बातें चल रही है कि ये जन्म मृत्यु का फेरा कैसे पार किया जाए, कैसे ब्रेक फ्री किया जाए, साथ ही जरा और व्याधि यानी बढ़ती जो उम्र है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हैप्पी बर्थडे कहकर और पुण्यतिथि कहिए, स्मृति दिन कहिए, वो भी मनाते हैं, और ओल्ड एज और ये जो व्याधि है यानी जो बीमारी आती है तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हमारे जो दोस्त हैं कुर्ला से आयाश चौधरी कहते हैं कि ये फेरा जन्म और मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, और ये जो जिंदगी है स्टार्ट टू एंड, इसके बीच में जो है अगर हम कुछ अच्छे काम कर पाए बुज़ुर्गों से या कुछ दुआएं आशीष हम अगर प्राप्त कर ले तो वो हमारे साथ जरूर जाएंगे, तो बहुत अच्छा ख्याल है। और भी कई सारे संदेश है, फिरोज सिंगनपुरिया कहिए, राकेश माथुर पूना से कहिए, शुभदा हमारी दोस्त जुड़ चुकी है, और संजय दर्शन का भी संदेश आ गया है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्रमोद चिंसोलकर इनका भी संदेश आ गया है, और भी कई सारे बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश हैं आपके साथ मैं साझा करूंगा। आपके विचार मुझे चाहिए, क्या सोच रहे हैं हम कैसे ब्रेक फ्री कर सके इस बंधन से। जी हाँ, तो फिलहाल सुनते हैं, थोड़ा सा भूल भुलैया में हम घूम रहे हैं, तो आइए थोड़ा विचार कर

जन्म मृत्यु और जरा व्याधि का जो फेरा है उसे तोड़ने की बात चल रही है, उससे ब्रेक फ्री होने की बातें चल रही है। और हमारे जो दोस्त है प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि ये समझना कि शरीर जो है नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, तो खुद को शरीर न मानकर शुद्ध आत्मा या फिर ब्रह्म महसूस करना है और बाकी लोगों में भी आत्मा ही देखनी है, या फिर वो जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है ऐसे हमें सोचना है। और ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आ रहे हैं अलग अलग, जो है हमारी समझ कैसी है, हम कैसे दुनिया को देखते हैं, या फिर थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच विषय को आ गया है, कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप सभी संदेश बिल्कुल भेजिए कि कैसे इस बंधन से हम जो है निकल पाए या फिर ब्रेक फ्री हो सके। पर ये बंधन जो है वो प्यार का बंधन है। जी हाँ, रक्षाबंधन भी आ रहा है, बंधन की बात हो रही है, बंधन से मुक्त होने की भी बात चल रही है, थोड़ा सा मिक्स विषय है। आइए साथ में विचार सागर मंथन करते हैं और अगला गीत करण अर्जुन से एंजॉय करते हैं।

0: स्टूडियो की घड़ी में 11:45 बस कुछ ही सेकंड में होने ही वाले हैं। और वैद्य ही हमारी जो दोस्त लिखती है कि जन्म मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, पर ये जो बीच में की जो रेखा है तो उसके साथ हमें बहना है, गो विद द फ्लो, और जो हर एक पल है उसे हंस के बिताना है, क्योंकि जब हमने जन्म लिया तब हम रो रहे थे, और जब हम इस दुनिया से चले जाए तो लोग भी हमारे लिए कुछ आंसू बहाने चाहिए, ऐसा कुछ काम हम करना चाहिए। दोस्तों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विज्ञापन का, मिलते हैं इस विज्ञापन के बाद।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
0: बहुत बढ़िया संदेश आ रहे हैं, और हमारे जो दोस्त हैं राजेंद्र परमार, वो लिखते हैं कि मरने का डर रखना चाहिए, जीने की आशा रखनी चाहिए, और प्यार बांटे चलना चाहिए, और सेवा भावी बनना चाहिए। विजय मोहबिया, अरुण गांवकर वरई से, सुनील पाठक हमारे जो दोस्त हैं उनका भी गुड मॉर्निंग संदेश आ गया है, थैंक यू सो मच। चंद्रशेखर मुड़ेकर, दीपा पालकर और प्रदीप अनंत कृष्णन, इन सभी का भी संदेश आ गया है, आप सभी का भी स्वागत है। और भी कई सारे संदेश हैं। मीरा डिसोलकर लिखती है कि नाम जप से जो है बेड़ा पार हो सकता है, पॉजिटिव कर्म हमें करते रहने चाहिए। साथ में शुभ लक्ष्मी मस्तकर कहती है कि भगवान का नाम कोई भी हो, आप जिसे जिस पर आपका विश्वास हो तो उस पर उनकी याद में हमें कर्म करने चाहिए, और आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच के संग हमें हम ये जो जन्म मृत्यु का फेरा है, जरा व्याधि का जो फेरा है, उससे बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, नाम का अपना ही एक महत्व है। तो आइए गणपति बप्पा को भी याद करते हैं और दिन को पावन करते हैं।

बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संदेश आ रहे हैं। ओमकार काटकर लिख रहे हैं कि इस फेरे से, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस फेरे से मुक्ति का ये उपाय है निष्काम कर्म करना, बिना फल की इच्छा किए अच्छे कर्म करते जाना, और नए कर्म कोई जो बंधन है उससे बचना चाहिए, और मोह माया से ऊपर उठकर आत्मा की ओर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और अमर पाटिल अलीबाग से शुभकामनाएं भेज रहे हैं। दीपा पालकर जी ने अच्छा संदेश भेजा है, वो लिखती है कि जन्म लेते हैं तब मृत्यु अटल होती है, और इस साइकिल को हंसते हंसते स्वीकारना, यही ब्रेक फ्री होना है। क्या बात है, कंक्लूडिंग लाइन दीपा पालकर

इन्होंने दी है, बहुत बढ़िया। और बाकी जो हमारे दोस्त है प्रमोद चिंचोलकर, उन्होंने चाय का फोटो भेजा है, कटिंग चाय। और जी हाँ, यानी म्यूजिक कैफे का भी समय पास आ रहा है, मुझे भी चाय पीने का मन कर रहा है। और जाते जाते इस विषय में एक संस्कृत सुभाषित है तो वो याद आता है, अनायासेन मरणम विना दैनीन जीवनम अंतकाले तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वर। जी हाँ, ये प्रार्थना हमें जब भी पॉसिबल हो तो करनी है। इसका मतलब है अनायासेन मरणम, यानी मरण ऐसा मिले कि जैसे फल पेड़ से गिरता है। बिना दैनीन जीवनम, यानी जीवन जो है, जीवन में कोई भी दैन्य भाव न हो, कोई भी परेशानी यानी गरीबी जो है, आर्थिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर जैसे हम देखते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बिना दैनीन जीवनम अंतकाले तव सानिध्यम, जब आखिरी सांस ले तो भगवान का नाम हमारे ओंठों पे हो, या फिर जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो रही थी तो स्वयं श्री कृष्ण सामने खड़े थे, या फिर जटायु की जब मृत्यु हो रही तो प्रभु श्री रामचंद्र के गोद में उनका मृत्यु हुआ। अंतकाले तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वर, यही परमेश्वर से, यही भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। और जी हाँ, ठीक 12 बजे ठीक हम समाचार सुनेंगे, उसके बाद हमारा प्यारा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे लेकर फिर हाजिर होगा आपका ही आरजे डॉक्टर निखिल। तो आइए किशोरदा की आवाज़ में ये बेहतरीन गीत जो हमारे कार्यक्रम का समापन सही तरीके से कर सकेगा।

आइए सुनते हैं अभी के ताज़ा समाचार। भारत और सेशल्स ने कहा है कि मत्स्य पालन क्षेत्र और व्यापक समुद्री अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि को बल देने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण स्तंभ है। मत्स्य पालन, शिशुपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सेशल्स शिष्टमंडल के साथ कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। समाचार में आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ओणम की भावना समाज में सद्भाव, एकता और आशा को मजबूत करे। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नज़र रख रही है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। समाचार के अंत में, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी के पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया है। यह फैसला 22 मार्च 2026 को हुई स्क्रीनिंग परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद की गई शुरुआती जांच के आधार पर लिया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

म्यूजिक कैफे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज डॉक्टर निखिल और आज हम बातें करेंगे रिपीटर्स के बारे में या रिपीटेशन के बारे में। तो आपको क्या लगता है इस विषय में, जो एग्ज़ाम में बार बार परीक्षा देते हैं, सब जो फेल हो जाते हैं या फिर जो यश है वो उन्हें नहीं मिल पाता, तो रिपीटर्स की तरफ आप कैसे देखते हैं या फिर कुछ काम जो है बार बार हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस के दफ्तर के, तो ऐसे लोगों को आप कैसे देखते हैं या फिर आपके विचार क्या है रिपीटेशन के ऊपर या फिर रिपीटर्स के ऊपर, हम जानना चाहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, नंबर है 8657661076।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे पसंदीदा कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। और दोस्तों, बातें चल रही थी रिपीटेशन के बारे में, यानी कोई चीज़ हम बार बार करते हैं तो उसके बारे में, या फिर फेलियर आ जाता है हमारे प्रयासों में, तो हम अक्सर कहते हैं कि फर्स्ट चांस इज़ द बेस्ट चांस। पर क्या सच में ऐसा होता है, फर्स्ट चांस इज़ द बेस्ट चांस? या फिर जो रिपीटर्स के बारे में आपको क्या लगता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा। बहुत सारे संदेश आ रहे हैं तो वो संदेश को मैं भी आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आपने संदेश नहीं भेजा तो जल्दी भेजिए 8657661071, क्योंकि ठीक 8:30-12 बजे हम एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनने वाले हैं, तो जल्दी कीजिए। तब तक एंजॉय करते हैं अगला गीत, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से।

जी हाँ दोस्तों, रिपीटर्स के बारे में बातें चल रही है, रिपीटेशन के बारे में बातें चल रही है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि सीनियर सिटीज़न जो होते हैं वो बार बार जो है बैंक के चक्कर लगाते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे चक्कर लगाते हैं, या फिर स्टूडेंट्स भी हैं। तो रिपीटेशन पार्ट, कभी कभी रूटीन भी हम रिपीटेशन के तौर पे ले सकते हैं। तो रूटीन का भी हमें जो है बोर लगता है, बोरियत आ जाती है। तो क्या लगता है, मतलब बार बार किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े या फिर बार बार एग्ज़ाम्स देने पड़े, तो थोड़ा सा हताश निराश लगता है? ऐसे हमारी जो दोस्त है भांडुप से, मीरा श्रीधर इनका कहना है, और चंद्रशेखर मुड़ेकर भी कहते हैं कि बार बार जब परीक्षा देनी पड़ती है, सफल नहीं मिलते, तो थोड़ा सा नाराज़गी लगती है। और भी कई सारे संदेश हैं। तो जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। मैसेज संदेश की बरसात हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत वक्त लगता है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी हमारी जो कोशिश है वो अलग तरीके से होती है, तो इसकी की वजह से भी हमें जो है कभी कभी असफलता मिलती है। तो ये रिपीटर्स की ओर देखने का हमारा नज़रिया बदलना चाहिए, और अगर हो सके तो उन्हें प्रेरणा देनी है, हो सकी तो उन्हें मदद करने की कोशिश करनी है। अगर सीनियर सिटीज़न है तो ऐप कैसे चलता है, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मदद आप कर सकते हैं, और तो ही एक सक्षम भारत क्रिएट होगा। और रिपीटेशन में कोई बुराई नहीं है, हम सभी जन्म से मरण तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमने चलना भी, बोलना भी गिर गिर के और या फिर गलतियां करके ही सीखा है। तो आइए एक दूसरे को प्यार से संवारते हैं, संभालते हैं, और अगला गीत सुनते हैं, और तीसरी मंजिल पे चले जाते हैं अगले गीत के साथ।

हमारे दोस्त प्रकाश शिंदे, इन्होंने आज के कार्यक्रम का सार हमें भेजा है। जी हाँ, वो कहते हैं रिपीटेशन के बारे में, लाइफ में रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम, NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ठीक 12:30 बजे। और ठीक 1 बजे हम सुनेंगे दोपहर चा बात में, और 1:05 में हमारा जो कार्यक्रम है हिट एंड हॉट, आपके लिए पेश करूंगा मैं RJ डॉक्टर निखिल। तो आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने ना जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
2: जी,
1: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और ना शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी, कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
2: जी।
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
2: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित

0: प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंडले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी जी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हंडले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हंडले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हंडले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी,
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हंडले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी,
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी,
1: हंडले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हंडले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचान

0: माना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: वाह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम,
6: हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर,

0: चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
6: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
6: हाँ, ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
8: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
9: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
10: वो कैसे?
11: क्या गड्ढा बनाना है?
12: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
10: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
12: हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
11: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
6: हाँ,

तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं आरजे डॉक्टर निखिल विद्या हरिंद्र शास्त्री और कार्यक्रम आपका पसंदीदा ही है। जी हाँ, हिट एंड हॉट कार्यक्रम है जिसमें मैं बैक सीट पे होता हूं और गानों की जो स्टेयरिंग है वो आपके हाथों में होती है, यानी आपके पसंदीदा गीत हम इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं, सब हम सब साथ में सुनते हैं। और जी हाँ, शुरुआत करते हैं। जी हाँ, हमारी जो पूना से दोस्त है केतना पंडित, इनकी जो रिक्वेस्ट है उससे शुरुआत करते हैं। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और प्रकाश की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है।

विजेंद्र घाटोल, इनकी फरमाइश हम अभी सुन रहे हैं। आइए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक फिल्म लगान से। आशुतोष गोवारी

अकोला में बारिश नहीं है, इसीलिए हमारे जो दोस्त हैं विजेंद्र घाटोड़, इन्होंने इस गीत को चुना और रिक्वेस्ट की इस गाने की। और हमारे जो दोस्त है बाबा कहिए, दादर से भूषण सोनावणे कहिए, श्रवण सिंह कहिए, और भी कई सारे दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं। मिंटू थॉमस है, शुभलक्ष्मी मस्तकर, अमित भगत, गोस्वामी गोपाल जी है, उसके बाद प्रदीप अनंत कृष्णन, गुरमीत सिंह, मीता सिंह है, और भी कई सारे दोस्त हैं। सभी के नाम लेने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, समय को सीमा है, पर हमारा जो प्रेम है आपके प्रति उसको सीमा नहीं है, इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को ज़रूर शामिल करना और इस गीतों में जो है आनंद और उल्लास और मज़े लेना न भूलिए। तो सोने की बात हमें करनी है, जी हाँ, जब बारिश होगी तो इस धरती से सोने जैसे जो है धान आएंगे और बरकत खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आज के हिट एंड हॉट कार्यक्रम में आपको हमें बताना है कि आप लगभग दिन में कितने घंटे सोते हैं। जी हाँ, सोने का भाव बढ़ता जा रहा है, वो अलग बात है, और हमारा जो सोना है हेल्दी रहने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सोने को कम समय मिलता है। तो जी हाँ, थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी है कि आप कितने घंटे सोते हैं। अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैं रात को लगभग 11:30 बजे सो जाता हूँ और सुबह 7:30 बजे उठता हूँ, पर ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से ये जो चेंजेस होते रहते हैं, पर अंदाजे आपको बताना है कितने घंटे नींद पूरी होती है, नींद पूरी होती है या नहीं होती, कहाँ ज़्यादा समय चला जाता है। तो जी हाँ, ढेर सारी बातें करनी है आपके संग, आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, और जी हाँ, यही तो मेन कारण है कि हम FM रेनबो से जुड़ते हैं, क्योंकि दिल से दिल तक का ये रिश्ता है। तो ज़रूर बताइए आपके सोने का पैटर्न कैसा है इसके बारे में। तो 8657661071 पर आपको हमें बताना है। फिलहाल ये गीत जो हमें नचाएगा हाई हिल पर, इसके रिक्वेस्ट की है मीरा डिचोलकर और आर्या डिचोलकर।

हमारे दोस्त प्रमोद चिंचोलकर लिखते हैं कि वो सुबह 3 बजे उठते हैं, उनका सब्जी का जो है वो व्यवसाय है, और 3 बजे उठ के वो सब्जी मंडी जाते हैं, और तो अपनी नींद कॉम्पनसेट वो दोपहर में, मतलब यानी अभी खाना खा के वो सोने जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसा उनका कहना है। ढेर सारे संदेश भी आए हैं, तो संदेश भी सुनेंगे और आपके जो पसंदीदा गीत है वो भी सुनने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए, फिरोज सिंगनपुरिया, विक्रम आठवले और हीरामणि वर्मा, इन्होंने एक गीत रिक्वेस्ट किया है, साथ में प्रमोद चिंचोलकर, इनका भी मैं नाम ले लेता हूँ। तो आइए ये बेहतरीन गीत सुनते हैं आशा ताई और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। तो विक्रम आठवले कहते हैं कि लगभग रात में 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 4:30 बजे उठते हैं, मतलब 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, तो फ्रेश फील करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इस गीत के बाद ठीक 1:30 में हम सुनेंगे मराठी समाचार, राष्ट्रीय मराठी समाचार, 1:30 से 1:40 तक। उसके बाद 1:40 पर हमारा जो कार्यक्रम है हिट एंड हॉट फिर जारी रहेगा। तब तक आप जो आपकी रिक्वेस्ट है वो हमें भेज सकते हैं 8657661071, और आपकी पूरे दिन भर में कितने घंटे नींद होती है, फ्रेश फील करते हैं नहीं करते, वो भी हमें ज़रूर बतानी है। तो आइए एक रोमांटिक गाना सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, यादों की बारात में चले जाते हैं।

आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर बहुत ही महंगे विषय पे हमारी चर्चा जारी है। जी हाँ, सोने पर हमारी चर्चा जारी है। जी हाँ, दोनों सोना जो है बहुत महंगा है। तो हमारे जो दोस्त है हीरामणि वर्मा, वो लिखते हैं कि वो रेलवे में जॉब करते हैं और शिफ्ट ड्यूटी रहती है, इसके कारण नींद ठीक से उनकी पूरी नहीं हो पाती और नाइट ड्यूटी से अभी अभी आए हैं तो उनके पसंदीदा गीत हमारे एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं। और पर कहते हैं कि एक बार अगर नींद टूट जाती है तो फिर से वापस नहीं आती। हमारे दूसरे जो दोस्त हैं अमित भगत लिखते हैं कि रात को 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठते हैं, गाय का दूध निकालते हैं और 6 बजे ठीक जो है खेत में चले जाते हैं। खेत का प्यारा सा फोटो भी उन्होंने भेजा है। हमारी दोस्त शुभलक्ष्मी मस्तकर लिखती है रात को 11 बजे सो के 7 बजे उठती हैं, बहुत ही बढ़िया। शुभदा लिखती है 11 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठकर जो है काम शुरू हो जाता है, दोपहर में सोने को बिल्कुल समय नहीं होता। यस, और जी हाँ, मीरा डिचोलकर लिखती हैं दिन में जो है 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाती है, 9 घंटे जो है दफ्तर का जो काम है 9 से 10 घंटे चलता है, तो ऑलमोस्ट रात में 12:30 बजे सो के सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, तो लगभग 5 से 6 घंटे नींद होती है। जी हाँ, तो सोना बहुत महंगा हो रहा है क्योंकि हमारा जो

काम का समय जो है वो शायद बढ़ रहा है, या फिर स्क्रीन टाइम का भी किसी हमारे दोस्त ने जिक्र किया है, उसके वजह से भी जो है नींद के लिए समय कम मिल रहा है। तो जी हाँ, पल पल जो है हमें देखना है कि हम कैसे हमारी नींद पूरी कर सके और रिफ्रेश हो जाए, रिचार्ज हो जाए। तो आइए, लगे रहो मुन्ना भाई, इस फिल्म से रिक्वेस्ट किया हुआ गीत। आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है, इतने सारे रिक्वेस्ट हैं, आप सभी का ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, तो किसी एक श्रोता से हम इस गीत को नहीं जोड़ेंगे, सभी के लिए ये अर्पित है। तो जिन श्रोताओं के नाम नहीं ले पाया उनके नाम ले लेता हूँ। उनके नाम कुछ इस प्रकार से है, गुरमीत सिंह मीता, उसके बाद राजकुमार, यस राजकुमार कुंभा ने भी हमें फ़ोन करके कहा कि सुबह जो है 4 बजे उठते हैं वो, रात में 11 बजे सोते हैं, तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। मेहर अरोरा, उनका भी संदेश आया है राजस्थान से, नवी मुंबई खारगर से राजेंद्र काले, दिग्दर्शन और कविता राम प्रजापति, दर्शन चंद्रशेखर मुळेकर, गुलाब गायकवाड़ संगमनेर से राजेंद्र परमार हमारे दोस्त, संदीप कुमार की ये रिक्वेस्ट है। तो जी हाँ, आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, बहुत ही फेवरेट गीत है हम सभी के लिए। FM Bimbo, musically yours, dil se dil tak.

हमारे दोस्त अंकित लिखते हैं कि वो कभी कभी जो है 12 घंटे भी सोते हैं, 12 से 15 घंटे भी सोते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्केड्यूल है, किंग जैसे जीना हो रहा है, बहुत बहुत बढ़िया। और कई सारे संदेश है, राकेश माथुर कहिए, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। प्रणव शिंदे है, मुकेश कश्यप है और गोपाल सकपाल है, इन्होंने भी लिखा है कि 6-7 घंटे नींद हो जाती है अच्छे से। तो जी हाँ, हेल्दी रहने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है और दिन ब दिन सोना बहुत ही महंगा होता जा रहा है, पर हमारा सोना महंगा नहीं होना चाहिए। यानी जब भी समय मिले पावर नैप हम ले सकते हैं या रात को सुकून की नींद ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप सभी, हम सभी समझदार हैं, हमारे हेल्थ के लिए क्या चाहिए हम जानते हैं। तो आइए इसी नोट पर मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, अनुमति लेता हूँ, यानी कि हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने, फिर आएगा डॉक्टर निखिल शास्त्री। लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और कई सारी फरमाइशें हैं तो कुछ सरप्राइज़ फरमाइशें आपके लिए पेश करूँगा। ठीक 2 बजे हम सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद दोपहर के जो 2:15 में हम सुनेंगे दोपहर के समाचार, और ठीक 2:30 बजे यानी 2:30 पे मराठी कार्यक्रम सला दोस्त हो बोलू का ही। तो आइए एंजॉय करते हैं अगले कुछ गीत, उसके बाद न्यूज़ और उसके बाद मराठी कार्यक्रम। टेक केयर, बाय बाय।

0: की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन।
0: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
2: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट।
2: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश के प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षण

0: के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। आईएमए ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। आईएमए ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए मनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर,

0: सीतापुर और उलाक पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने 0 से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के 4th दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ

वेलकम बैक दोस्तों। 5 मिनट का ठीक 2 मिनट और 5 सेकंड हो गए और टक टक करते हुए घड़ी की काई बता रही है कि वक्त कभी भी किसी के लिए इंतजार नहीं करता और इसी तरह हम भी आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाते। अब मराठी शोज़ के बाद में वक्त आ चुका है हिंदी शोज़ का और सबसे पहला कार्यक्रम जो आपके समक्ष हाजिर है उसका नाम है लव यू जिंदगी। और आज ओनम जैसा एक खूबसूरत फेस्टिवल भी और साथ में है ईद ए मिलाद उन नबी। जी हाँ, इन सारे खूबसूरत फेस्टिवल्स के साथ में ये भी दस्तक जो है अब आने वाली है कि सर्दी का मौसम आने वाला है। वो बात अलग है कि मुंबई में कभी भी सर्दियां नहीं पड़ती है, लेकिन सर्दी के फल जो हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। मार्केट में अंगूर की खेती कहीं ना कहीं दिखाई देने लगती है और वो कुछ चीज़ें जो शायद हमें सर्दियों में खाने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं और ज़बान में एक अलग ही तरह का स्वाद पैदा करती हैं। इसी तरह से आज इस खास कार्यक्रम में अलग अलग तरह के स्वाद आप लेंगे खूबसूरत गानों के साथ में। सबसे पहला गाना आपके समक्ष हाजिर होने जा रहा है उदित नारायण साहब की आवाज़ में, साथ में होंगे कैलाश खेर और हरिहरन। मेरा नाम है के थांडा और इस शो में आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर।

चाहता है। दिल तो देखिए बहुत कुछ चाहता चाहता है, वक्त से पहले तनख्वाह मिल जाए, और वक्त तो ये कहता है कि आप कितनी भी मेहनत करो, जब तक लकीरें आप अपनी मेहनत से नहीं लिखोगे या फिर आपकी किस्मत में नहीं लिखी होंगी, शायद वो चीज़ आपको ना मिले। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी किस्मत को अपने हाथों की लकीरों से नहीं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, और कुछ वो होते हैं जो सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी ही खूबसूरत हैं, जैसे बात करूँ इन फेस्टिवल्स की। आप अमूमन देखोगे जब भी रक्षाबंधन आता है वो 15 तारीख के आसपास ही आता है, लेकिन इस बार जो है वो 28 तारीख को पड़ रहा है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी कुछ लकीरों वाली कहानी है। क्या कहानी है बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। फिलहाल वक्त हो चला एक बड़े ही खूबसूरत से गीत का, जो है अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

रिश्तों का मांझा बहुत ज़रूरी है बनना, क्योंकि अगर ये कट जाए तो भाई साहब ज़िंदगी की डोर कट जाती है। और ज़िंदगी की डोर बनती है रिश्तों से, वो रिश्ते जो हमेशा शायद एक छोटे से धागे से शुरू होते हैं, वो धागे जो हम रक्षा बंधन के दिन बांधते हैं, भाई दूज बांधते हैं, कभी पीपल के पेड़ को बांधते हैं तो कभी तुलसी को बांधते हैं। और ये धागे ही होते हैं जो हमेशा हमारी आंखों को नम करते हैं और कभी खुशियां देते हैं। अगर हम बात करें आज के इस ट्रेंड के बारे में, तो आज की तारीख में कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पॉपुलर ट्रेंड के बारे में। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है डिजिटल जो है डिटॉक्स, यानी इसके अंदर क्या है, हम अमूमन अपने फ़ोन से जुड़े रहते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, टीवी से जुड़े रहते हैं, और आप देखते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में इंस्टाग्राम पर भी एक बड़ा अच्छा फीचर आ गया है कि भाई साहब उसके अंदर आप टाइमर लगा लेते हो कि इस टाइम के अंदर आपको पता चल जाए कि इससे ज़्यादा अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन लत ऐसी है कि भाई साहब छूटती नहीं है, टाइम बढ़ा लेते हैं, है ना। लेकिन अगर कभी कभी चीज़ों को सीरियसली लिया जाए और डिजिटल डिटॉक्स किया जाए, तो ये डिजिटल डिटॉक्स के ज़रिए ज़िंदगी कितनी बड़ी हो सकती है, आमिर खान से सीखिए, आमिर खान साहब। और मैं कहूँगा एक और बड़ी ही खूबसूरत सी हस्ती है, फिल्मी हस्ती, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इन डिजिटल वर्ल्ड से गए हैं वो उस दुनिया में जो एनालॉग की दुनिया है, वो दुनिया जो शायद हम कहीं पीछे छोड़ा है, वो मोबाइल फ़ोन जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बटन होते थे, उनके अंदर आपकी स्मार्ट स्क्रीन नहीं होती थी, उनमें सिर्फ फ़ोन आ जा सकते थे लेकिन आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता था। और इस तरीके से लगता था कि 24 घंटे का दिन वाकई में 24 घंटे का है। लेकिन फ़िलहाल आप भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा सोच रहे हो यार कि पता नहीं चल रहा दिन कब बीत गया, तो 24 घंटे आज की तारीख में सभी के पास हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का कोई आम नागरिक हो। तो अगर आप भी अपने दिन को 24 घंटे वाला जीना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ डिजिटल डिटॉक्स में जाइए और ये डिजिटल डिटॉक्स के अंदर अपने फ़ोन के इंटरनेट को, चाहे तो वो कोई सोशल मीडिया की ऐप हो, उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं और गानों की दुनिया के साथ साथ इन्फॉर्मेशन की दुनिया से जुड़ सकते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत आपके समक्ष हाजिर करने जा रहा हूँ, लता मंगेशकर साहब की आवाज़ में तो नहीं कह सकता कि उनके साथ में हैं उदित नारायण जी और उनके साथ में हैं गुरदास मान साहब। और जब कई सारे साहब एक साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ में साहिबा का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और वो हैं लता मंगेशकर जी। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जो होने वाला है एक बड़ी ही खूबसूरत सी फिल्म से। इस गीत का नाम है ऐसा देश है मेरा वीर जारा से।

काफिराना साहेदिल अरिजीत और निकिता गांधी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक है केदारनाथ से, और मेरे ख्याल से गाना सुनने के बाद में आपने शायद केदारनाथ के दर्शन कर लिए होंगे, है ना। अभी तो ऐसे भी कावड़ यात्रा वाला जो है माहौल गुजरा है, या यूं कहो कि वो कभी गुजरता ही नहीं है, हमेशा चलता रहता है। फिलहाल उन वादियों में एक अलग ही महक है, और वो वादियों की महक अगर आप मुंबई में हैं और उनको महसूस करना चाहते हैं तो गानों के अलावा और कौन सी चीज़ है जो हमें उनसे जोड़ सकती है। फिलहाल मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि इस रक्षाबंधन पर आप कौन सा तोहफा अपनी बहन को दे रहे हैं। हाँ वैसे तो उन्हें तोहफा देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनका पर्स जो है यूं कहिए कि आप ही के पर्स से भरा रहता है, या यूं कहें कि आबाद रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना बताए दे दी जाती हैं, जो शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वैसे कुछ लोग कहते हैं घर जमाई लेकर आ गए हैं आज तो एक बड़ा ही पॉपुलर सा ट्रेंड है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम। आप सभी जानते हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ था 2020 के अंदर, वो कल्चर जो भाई साहब किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन उस कल्चर के साथ साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई, यूं कह सकते हैं, वो है फैशन वाली चीज़। और ये फैशन वाली चीज़ ये थी कि आप आज की तारीख में सड़क पर चलते हुए कुछ लोगों को देखोगे जो कहने को जेंजी भी हैं और मिलेनियल भी इस दौड़ में आ गए हैं, जो नीचे पहनते हैं ढीले ढाले पजामे और ऊपर पहनते हैं वो ऐसी फॉर्मल शर्टें जिन्हें देख कर आपको लगता है कि आप थोड़े से पुराने हो गए हो और वो नए हो गए हैं। फिलहाल क्या आपने अपनी ऐसी कोई तस्वीर खींची है जिसके अंदर आप अपनी उम्र से थोड़े से छोटे लगने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने किसी को ऐसा देखा हो जो आपको लग रहा हो यार मैं कभी तो ऐसा लग सकता हूँ, या आपको लग रहा नहीं यार ये तो थोड़ा सा अजीब है यार, फिर आपको लगने लगता है यार, आपको लगता है मेरी खुद की सोच पुरानी हो रही है लेकिन वक्त बदल रहा है। आपकी सोच क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, बात करेंगे आज 7 से 8 के इस खास शो में जिसका नाम है हम और तुम। चलिए सुनाता हूँ एक और खूबसूरत से ट्रैक को मोनाली ठाकुर की आवाज़ में सवार लूँ। यूं ही कहते हैं कि जिंदगी सवारते रहिए क्योंकि जितनी भी सवार उतनी कम है।

5:51 ठीक 51 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और वक्त कह रहा है कि कभी भी वो किसी के लिए रुकता नहीं है। इसी तरह जो ट्रेंड्स होते हैं ये भी बिल्कुल नहीं रुकते हैं। आजकल एक बड़ा ही अजीबोगरीब ट्रेंड चल रहा है और उसे बोलते हैं चॉकलेट गोलगप्पा का ट्रेंड। जी हाँ, ये फूड जो है या अलग ही तरह का इंटरनेट पर इन दिनों तीखे और खट्टे पानी की जगह चॉकलेट के सिर्प वाले गोलगप्पे छाए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब आ हा हा हा क्या मजा आता है खा के, और कुछ कह रहे हैं यार ये तो फूड क्राइम है भाई, ये कोई बात है चॉकलेट के साथ गोलगप्पे, यार ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है कि नहीं है। आपने क्या चॉकलेट गोलगप्पे ट्राई करें? अगर नहीं करें तो जाकर अपने पानीपुरी वाले से पूछो भैया ये चॉकलेट गोलगप्पे का क्या नया राज है जरा हमें बताओ। इसके बाद में एक और खूबसूरत सा ट्रेंड चल रहा है आजकल, सोलर पावर का ट्रेंड। और ये सोलर पावर का ट्रेंड जो है घरों घरों में बिजली तो दे ही रहा है, लेकिन आपकी घड़ियां आपके मोबाइल फोन्स भी अगर मान के चलो सोलर पावर से चार्ज होने लगे हैं भाई साहब मज़ा आ जाएगा ना, चार्जर की छुट्टी हो जाएगी, अरे भूल गए घर पे चार्जर, टेंशन ही ख़त्म, 24 घंटे फ़ोन में लगे मैं फिर तो हैं कहाँ बन रहे फिर आइए सब ज़रा। चलिए 5:52 हो गए हैं, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल बताना चाहूँगा 6:05 पे आप सुनेंगे मराठी में समाचार, और उसके बाद एक और खूबसूरत से कार्यक्रम का आगाज़ होगा जिसका नाम है अंदाज़े बयां। उसमें सुनेंगे आप खूबसूरत से शायरी, दोहें और कविताएं। फिलहाल बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर अपने दोस्त के साथ जिसका नाम है के थांडा। अगली आवाज़ आपके समक्ष आने जा रही है अरिजीत सिंह की लापता लेडीज से। आप मत कहीं लापता हो जाना, क्योंकि मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और आप बने हुए हैं मेरे साथ ओनली ऑन 107.1 FM मुंबई से FM रेनबो के इस खास चैनल पर।

लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स में दोस्तों आपका स्वागत है। 6:15 और 7:08 हो गए हैं। अंग्रेजी मीडियम के

आप ये सीख लेते हैं कि 6:15 बजे क्या होता है, 6:30 बजे क्या होता है, 7:15 बजे क्या होता है ना। ये शब्द समझ लें कि घड़ी की सुई जब 3 पर आकर टिकती है बड़ी वाली, जब 6 पर आकर टिकती है, 9 पर आकर टिकती है, तो ये घड़ी की सुइयाँ जीवन की सुइयों से मिल जाती हैं, और आपको और आपके दोस्तों में और आपके जितने भी जनरेशन का गैप है वो वक्त को कम कर देती हैं और आपको अपनेपन का एहसास कराती हैं। एक बड़ी ही खूबसूरत सी कविता है, वो कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थलों से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद को भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा।

वेलकम बैक दोस्तों। 6:28 और 33 सेकंड हो गए हैं और टिक टिक करती हुई घड़ी की का इशारा कर रही है कि एक और कविता आपके समक्ष हाजिर की जाए। कार्यक्रम अंदाजे बयां में और बड़ी ही खूबसूरत सी कविता है। वो कहते हैं कि ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की तो ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कोई फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। और इसी के साथ में हरि हरन साहब की आवाज़ में, साथ में सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में एक बड़ी ही खूबसूरत सी नज़्म सुना रहा हूँ आपको। और ये नज़्म है चप्पा चप्पा चरखा चले

बैक टू बैक आप सुन रहे हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत से गीत। अगला गीत आपके समक्ष आया पूरन चंद वडाली जी की आवाज में। उससे पहले एक बड़ी ही खूबसूरत सी लिखी हुई कुछ पंक्तियां आपके समक्ष हाजिर करता हूं। वो कहते हैं कि सफलता से थोड़ी दूरी है, सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी थोड़ी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे, पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी अब मेरी है।

आंखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगा और हासिल करूंगा, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगा हाँ आज मेरी बारी है।

0: वेलकम बैक दोस्तों। फिलहाल 6:59 हो चुके हैं और वक्त ये कहता है कि ये शो का समापन यहाँ होता है, लेकिन अगला शो जो है आपका इंतजार कर रहा है, जिसके अंदर आप सुनेंगे बॉलीवुड के खूबसूरत ट्रिवियाज। वो ट्रिवियाज जो पर्दे के पीछे ये कहानी हमें बताते हैं और बताते हैं कि ये फिल्में ऐसी क्यों हैं, यस फिल्मों के पीछे का राज क्या है। क्योंकि फिल्मी पर्दे पर क्या होता है ये तो हमें पता चल जाता है, लेकिन पर्दों के पीछे क्या होता है ये तो हमें ट्रिवियाज ही बताते हैं। तो फिलहाल अगर आप सुनना चाहते हैं खूबसूरत फिल्मों के ट्रिवियाज तो बने रहिए 107.1 FM पर। ठीक 7 बजे के बाद होगा एक और बेहतरीन शो का आगाज, जिसका नाम है हम तुम। फिलहाल इतना ही कहूँगा कि 7 बजे आप सुनेंगे मराठी में समाचार और उसके बाद मिलेंगे खूबसूरत गानों की दुनिया में।
1: लाइफ की बीट्स होती नहीं फिक्स, लव यू जिंदगी 5 to 6 एवरी इवनिंग विद चाय बिस्किट्स, ट्यून इन रेनबो, रिलैक्स एंड चिल।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: म्यूजिकली योर्स में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। 7:10 हो गए और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 107.1 एफएम रेनबो पर आज का एक खास शो जिसका नाम है हम तुम। और मैं कहूँगा कि हिमेश रेशमिया की जो फिल्में आती थी, यानी वो फिल्में जो गानों की वजह से जानी जाती थी, जिसमें हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक होता था, और बैक टू बैक तेरा सुरूर सुन रहे हैं आप भाई साहब, दिन रात बोर होने की बात तो दूर की है। कॉलर ट्यून आपका बन गया था, और यूँ कहिए कि अगर गाड़ी के अंदर आप बैक करते हैं तो उसमें भी ट्यून लगा दी थी। वो दौर मुझे लगता है कि शायद आवारापन जो भी फिल्म रिलीज़ हुई है उसके साथ वापस आ रहा है। पहला गाना आपके समक्ष हाजिर होने जा रहा है मुस्तफ़ा जहीद की आवाज़ में, तो फिराओ आवारापन।

वेलकम बैक दोस्तों, 7:00 ठीक 23 मिनट हुए हैं और आप सुन रहे हैं बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने और ये आवारापन का ये वो ट्रैक है जो तकरीबन आपने सालों पहले सुना था, लेकिन अब 14 अगस्त को फिल्म रिलीज हुई आवारापन 2 और उसने भी अपने लगी झंडे गाड़ दिए। साथ में एक और फिल्म रिलीज हुई थी और वो फिल्म थी सनी पाजी की। दोनों फिल्मों में ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन रहा कि कौन सी फिल्म ज़बरदस्त नंबर कमाएगी और दोनों ही फिल्मों में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी हमारी प्यारी शबाना आज़मी जी। और फिलहाल इन दोनों ही फिल्मों के क्या कारोबार रहे इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत सा ट्रैक आपका वेट कर रहा है, इसके बाद में वापस आता है क्योंकि इसका भी जो है सीक्वल बन चुका है जिसका नाम है गदर। और इस फिल्म ने जब पहली बार पर्दे पर अपनी चमक दिखाई थी तो हर तरफ गदर मचा दिया था। आपको ये बताना है कि इसके साथ कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी जब गदर 1 रिलीज हुई थी। और हमारा जो नंबर है वो आपके पास बस आ रहा है, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने आज से पहले कभी भी हमारे FM रेनबो स्टेशन पर अपनी कोई रिक्वेस्ट साझा नहीं करी है, यानी कि कोई भी गाने की रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं, अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं या पंक्तियां शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8657661071 पर। आपको मैसेज में लिखना होगा व्हाट्सएप पोर्ट में जाके फर्स्ट टाइम FM रेनबो और फिर जिस गाने को आप सुनना चाहते हैं 2000 के बाद के गाने हम यहाँ पर प्ले करते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक उदित नारायण साहब की आवाज़ में।

बैक टू बैक आप दोस्तों सुनेंगे एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। जहां तक बात चल रही थी फिल्मों के क्लैशेस के, जहां पर एक तरफ बंटवारा रिलीज हुई और एक तरफ आवारापन टू यानी कि इमरान हाशमी बिल्कुल एक बार फिर से उन्होंने अपना जो है कह सकते हैं फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त है, उन्होंने ये जो फिल्म उनकी रिलीज़ हुई है बॉक्स ऑफिस पे छप्पर फाड़ के कमाई करी और तकरीबन इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 117.66 करोड़ की कमाई करी, मतलब झंडे ही गाड़ दिए। यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसके साथ में जहाँ तक बंटवारा की बात करें, बंटवारा ने जो है बॉक्स ऑफिस पर उतने ज़बरदस्त कलेक्शन नहीं किए और ये कह सकते हैं इमरान हाशमी की जो फ़ैन फॉलोइंग, उनके जो गानों की ग्रिप है या उनकी कहूँ एक अपने आप में ऐसी चीज़ें जो पब्लिक को खींचती हैं, उनका करिश्मेटिक जो कह सकता हूँ ऑरा है वो बॉक्स ऑफिस पर इस बार छाया रहा। और ये फिल्म काफ़ी लंबे अरसे बाद जब सीक्वल में रिलीज़ हुई तो इसने ज़बरदस्त नंबर कमाए। और जहाँ तक बात करी थी मैंने आपसे कि कौन सी फिल्म गद्दर के साथ में रिलीज़ हुई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया। इसमें अरविंद का नाम है, जो है सीन का नाम है, राहुल का नाम है, आयरन का नाम है, विजय लक्ष्मी का नाम है, रमैया का नाम है, ये सारे लोग जो हैं अलग अलग जगह से इस शो को सुन रहे हैं। तहे दिल से शुक्रिया इस शो से जुड़ने के लिए। और अगली जो आवाज़ आपके समक्ष आने वाली है वो भी इमरान हाशमी की फिल्म मर्डर

से है और हर्ष सक्सेना की आवाज़ में होने वाली है। इसकी रिक्वेस्ट भेजी है आनंद ने और ये मीरा रोड से इस वक्त शो को सुन रहे हैं और एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी वाइफ सुनैना के लिए। तो सुनिए इस खूबसूरत से गाने को। अगर आप भी चाहते हैं कोई खूबसूरत सा गाना आपका FM रेनबो पर साझा हो और आपने आज से पहले कभी भी कोई रिक्वेस्ट साझा नहीं करी है और आप फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप मोड में जाइए, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज में 8657661071 पर अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। मैसेज में आपको लिखना है फर्स्ट टाइम FM रेनबो और फिर वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं 2000 के बाद का, किन को डेडिकेट करना चाहते हैं और आपका नाम, कहाँ से आप इस शो को सुन रहे हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। अगली रिक्वेस्ट आई है रितिका की। रितिका इस शो को सुन रही हैं बैंड्रा से और ये सॉन्ग प्ले करना चाहती हैं नरेंद्र के लिए। और इस ट्रैक के साथ में दो और खूबसूरत से ट्रैक आपके समक्ष हाजिर होंगे और मैं आपसे लूँगा विदाई, यानी कि 8 बजे एक और खूबसूरत शो का आगाज़ होगा अंग्रेज़ी में और फिर आप सुनेंगे अंग्रेज़ी के एक से बढ़कर एक सुपर हिट गाने। टिल देन रखिए अपना ख्याल। इतना ही कहूँगा कि रक्षाबंधन में आप वो बंध के बन जाएं कि शायद रक्षा का सूत्र आपसे ही जुड़ा हो, यानी कि हम सब से। बने रहिए 107.1 FM रेनबो पर, जहाँ होता है लेस पकाना मोर बजाना। तो चलिए सुनते हैं अगला गाना।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-98-51-31-6807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है

0: 977-909-10-7500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और

0: स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर

0: ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
2: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for Akashvani News, Delhi.
1: Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTP

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नोवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं।

हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरल वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेस ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रंग महफिल और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जी जनाब, अगर जिंदगी में कभी आपको कोई पड़ाव ऐसा आए जिसमें आपको लगे कि गम ज्यादा है, आंखों में नमी थोड़ी बढ़ गई है, माथे पर शिकन थोड़ी गहरी हो गई है, सांस जरा भारी हो गई है, तो घबराइएगा मत। हमेशा याद रखिएगा कि हर शाम के बाद सुबह जरूर होती है और उसी सुबह के सहारे, उसी शहर के सहारे वो गम की शाम काटी जा सकती है, है ना? प्रोग्राम रंगे महफिल है और इस प्रोग्राम में ये रंग जो हम घोल रहे हैं जगजीत साहब की आवाज़ में, इस गज़ल का गौर फरमाइए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार

0: तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले हैं।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

छपी थी जिस की गजल में जमाने भर की खुशी, छपी थी जिसकी गजल में जमाने भर की खुशी, खुद उसकी जिस्त का नगमा अजाब से उभरा।

तुम इसी मोड़ पर हमें मिलना, तुम इसी मोड़ पर हमें मिलना, लौट कर हम ज़रूर आएंगे। चलिए जनाब, वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। ख्याल रखिएगा अपना। लता मंगेशकर की आवाज़ के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा

अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन में पेंचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमावर्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आज के इस जीरो आवर शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। कुमार सानू जी की आवाज से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसके बोल हैं दिल तो खोया है यहीं पे कहीं।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 12:16 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: 12:23 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जीरो आवर शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आज आपका दोस्त अर्चित। तो आइए एक और बेहतरीन से गाने को सुनते हैं सोनू निगम जी की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हैं जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 1 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित 500 लोग लापता हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा है। चीन के पेचिंग में स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है

कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेचिंग में सीमावार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में 28 औद्योगिक इकाइयों का विशेष सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण अभियान पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन किए बिना गैर कानूनी तरीके से चल रही औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने के लिए चलाया गया। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वैक्स ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:04 हो चुके हैं और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 1:39 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाओ, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन के पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में

शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेचिंग में सीमावार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित रखने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद 4थे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत हुई है और हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वाक्स ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:04 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए ना बने। और आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

2:31 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अलचित के साथ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 3 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत हो गई है। 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रैवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनः निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन में पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0008618514284905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रण करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के

पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत और सहायता मिल सके। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए हैं। मैच में भारत की पकड़ मजबूत हुई है और हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:04 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।

अब जाएंगे कितनी दूर, भाई बस्तूर, भाई बस्तूर।

0: तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: ఏక పేరు ఆయన, యా గోళా బోల్లా, యా చతుర బోల్లా, గా
1: ఎక చతురన్నా.

0: संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

चार बजे हैं। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में करीब 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 750 लोग लापता हैं। नेपाल की यात्रा पर गए कोलकाता के 32 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। वे मानसरोवर यात्रा के लिए एक ट्रेवल एजेंसी द्वारा संचालित समूह में गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की है। जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन में पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक आई बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00868514289405 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी है। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया है। उसने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से चरणबद्ध और लक्षित तरीके से प्याज जारी करना शुरू कर दिया है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मेघालय मंत्रिमंडल ने चक्रवात के अलावा आंधी तूफान और तेज हवाओं को राज्य में स्थानीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य प्रशासनिक स्पष्टता देना और सुनिश्चित करना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को समय पर राहत और सहायता मिल सके। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंप दिए हैं। योजना के तहत

पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन निर्धारित है। क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका फॉलो ऑन के बाद आज पांचवें दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलेगा। मैच में भारत की पकड़ मजबूत बनी हुई है और हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्कॉफ वॉश ओपन में भारत के वीर चेटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आपस में सामना होगा। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।

तू में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।